0: Hi.
1: Welcome.
2: No, nothing for me. Bus chai.
1: Of course. But try this.
2: All right. You got me. One toasty.
3: Britannia Crispy Toasty. This festival, grab great in-market offers. Keep something for every bus chai guest.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar. Afternoon, my friends.

जिगर दा टुकड़ा लेडीज वर्सेस रिकी पॉल Song number two. Which one do you want to hear? 07925 700 270. Let me know, friends.

0: the creamiest, dreamiest coconut milk, it's always Tropical Sun. Tropical Sun, the flavors of the world.
1: Diaz, we are specialist Asian outfitters and our stylists are ready to dress you and the whole family, whatever the occasion and celebration. Diaz bridal wear, groom's wear, men's wear, party wear collection, suits, lehengas and saris. We also have XL sizes in stock, plus a complete kids wear range. Visit Diaz 213 to 215 Soho Road, Birmingham. Our latest collections are now in store.
2: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम इन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम इन खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
2: जेम इन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
4: Pepe's Piri Piri presents Jubin Nautiyal live in concert.

0: gentlemen, there is your listener's choice. Stand by for your mystery voice. I've tried to make all the features a little bit more difficult today because you were all moaning yesterday and the day before. On Friday.
1: It's too easy. It's too easy.
2: Listener's Choice, brought to you by Star Plus.
3: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player.
4: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Geo Hotstar.
0: Right, so come on then, have a listen to this voice. No clues whatsoever. Who can get the answer first and be my hero of the hour?
5: Sir, film 3D गया तो मुझे किसी ने बोला कि ऐसे जाने नहीं देंगे तो मुझे लगा कि you know, शायद देख के लगूंगा मैं एक्टर टाइप का हूँ, एंट्री दे देंगे. पर वहाँ पर भी फिल्म सिटी में रोक लिया, बोले कि जब शूटिंग नहीं है तो जाना नहीं पड़ता. तो आप 15-20 मिनट खड़ा रहा वहाँ पर और फिर किसी को 200-400 खिलाए और फिर अंदर वापस गया.
0: Who is that?
6: The hit of the hour with Jamin Foods. नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो बॉल, चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.
0: 07925-700-272. Do you recognize that mystery person?

0: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Pepe's Piri Piri, fresh flame grilled just for you. Over 260 stores nationwide. There's one near you.
1: This will be my very last season of Coffee with Karan. So join me and have that one last cup of coffee with me.
2: Join Karan Johar and his esteemed guests for the final season of Coffee with Karan from 14th October on Jio Hotstar. Download and subscribe now.
3: Dad, where have you been?
4: I went to supermarket, snack shack chahida si, big cricket match today on TV and movie afterwards.
3: We had popcorn and crisps, Dad.
4: I'm a desi. I need my Indian snacks. Supermarket with chatwal milia.
3: Uncle Chatwal?
4: नहीं चटवाल दे नमकीन रेंज प्लेन भुजिया आलू भुजिया खट्टा मीठा नींबू मसाला नवरत्न मिक्स एंड मूंग दाल ओए मैं फुल सिलेक्शन चकले आया
0: चटवाल्स मजेदार स्पाइसी इंडियन स्नैक्स आर अवार्ड विनिंग ग्रेट टेस्ट ऑफ 2026 विनर्स अ ब्रांड बाय एसओपी इंटरनेशनल नाउ अवेलेबल एट मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन सुपरमार्केट्स एंजॉय विद फैमिली एंड फ्रेंड्स
5: दिस मंथ मेरा बॉयलर इज ऑफरिंग अ प्री बुकिंग सेल विद अ £350 discount on all Bosch boilers. Get a fully fitted 25 kilowatt Bosch boiler for just £1,875. Complete with a 7-year guarantee. Call 020 8150 2025 or visit metaboiler.com now.

0: 1, 2, 3। दोस्तों आप सभी का स्वागत है खेलो और जीतो के मेगा एपिसोड में। बम्पर प्राइज जीतने के लिए अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
1: जी पाजी।
0: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
2: सर जी प्लीज, मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूंगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूंगा।
0: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए।
3: हेलो
2: पापा जी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और सवाल ये है कि गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
3: ओ हाय रब्बा, ओ उल्लू के पट्ठे, तेनू एना भी नहीं पता, सारी दुनिया नू पता है यार, गोल्ड बैंक।
2: सर जी आंसर गोल्ड बैंक लॉक किया जाए।
0: और ये बिल्कुल सही जवाब, गोल्ड बैंक इज द राइट आंसर। सबको पता है गोल्ड खरीदने और बेचने की सबसे सही जगह है गोल्ड बैंक। हाय
4: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ ऑल 0203 500 1111 goldbank.co.uk।
5: Coming up, simply a miracle story, but first it's Muni Badnam from Dabang on the UK's biggest Asian mix. You're locked into NADS.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: Coming up, it is Heer from Jab Tak Hai Jaan along with his son. Pani Pani with Badshah Anastha Gill coming your way. Keep it locked.
1: Every week in the UK, 12 young people aged 35 and under die suddenly from an undiagnosed heart defect. 80% of these cases have no symptoms, which is why cardiac screening is so vital. CRY, Cardiac Risk in the Young, screens around 30,000 young people every year, and CRY wants every young person in the UK to have access to screening. But we need your support. To find out more, go to c-r-y.org.uk/sunrise. Radio.
2: Herald, a new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald Winter Catalogue today. Call 0208-507-7900 or download their Winter Catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and delivery businesses. Herald Packaging, available at food services, cash and carries and with disposable suppliers to trade, visit heraldpackaging.com.
3: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज। 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
4: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union, share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online, enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
5: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, we've got unbeatable deals waiting for you. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
6: England में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती. अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं. हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है. हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं. शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए. पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा. हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं.
7: कुट कुट के बहुत जी लिया, हुन खुल के जौंदा वेला है. सिर्फ खेड नहीं लड़ाइया.
8: नीरू बाजवा, सनी सिंह, जगदीप वड़िंग, अमरप्रीत सिंह स्टारर थापी 16 अक्टूबर तो तुहाडे नेरली सिनेमा करा विच.
9: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
0: Time now is 9:42. And we have Simon from Cheltenham. You've sent some beautiful pictures of some food. It's made me so hungry. I could really eat that plate now, all in one go. It looks delicious.

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: Fancy winning something tasty on the side? Every time you order at Pepe's, you're in with a chance to win tech vouchers instantly. Stick around, because at the end of the month, one lucky winner scoops a bonus prize. And every single order this month is automatically entered into our grand prize draw, which is a full-on gaming bundle. Up for grabs, so order your Pepe's like you always do. Flame-grilled, piri-piri, Pepe-licious flavor. And you might just walk away with more than a full stomach. Pepe's, win big. T's and C's apply.
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज। 28 वॉटफर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
3: Hey, have you heard the news? Mohanji! Yes, Mohanji! He's really coming to town. Come, join the festive fun and divine celebration of life. There's yummy food and bhajan jamming, bringing all communities together under one roof in Wembley Park at 27 Patidar Center on Sunday, 25th October at 2 p.m. Don't miss out, guys. Not every day you get a chance to be with a living master. Get your tickets now at mohanji.org/UK.
1: Discover Rio de Janeiro, Sao Paulo in Brazil, Machu Picchu and Cusco in Peru with travelhubworld.com.
4: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 or 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
5: Travel Hub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.